आता माझी सटक सटक बम तेरा गुते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बेबी टिके टिके काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker।

0: Elambu Break Time.
1: सेवा बुक स्टोर चौतारा पाँच सिन्धुपाल्चोक
2: हाम्रा सेवाहरू
1: स्टेसनरीका सम्पूर्ण सामानहरू
2: फोटोकपी प्रिन्ट
1: कलर प्रिन्ट
2: पीवीसी आईडी कार्ड
1: सबै प्रकारका खेलकुद सामग्रीहरू
2: सबै तहको तथा विभिन्न पुस्तकहरू
1: सबै प्रकारका कम्प्युटर सम्बन्धी कामहरू
2: ट्रफी
1: मायाको चिनो
2: मेडल
1: फ्रेम
2: जर्सी सेटहरू तथा प्रिन्ट
1: सब्लिमेसन प्रिन्ट
2: जर्सी प्रिन्ट
1: कस्टमाइज कप प्रिन्ट
2: मेटल फोटो प्रिन्ट
1: प्रोप्राइटर
2: प्रकाश श्रेष्ठ
1: सेवा स्टेसनरी एन्ड सप्लायर्स सप्लायर्स
2: कन्ट्याक्ट नम्बर 9841924274
3: अरुणीको होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छ गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक आवर सर्विसेस डिलक्स रूम विथ एसी हॉट एंड कोल्ड वाटर एलईडी टीवी सेमिनार हॉल रेस्टुरेंट एंड बार फ्री वाईफाई पार्किंग एरिया फैमिली एंड जॉयफुल एनवायरनमेंट कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज आवर कंजुगेंस न्यू अरुणीको होटल एंड रेस्टुरेंट प्राइवेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छ गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक ईमेल होटल अरुणीको @gmail.com कॉन्टैक्ट 0116206906089822293 न्यू अरुणीको होटल एंड रेस्टुरेंट प्राइवेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छ गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक
4: Elambu FM 89.6 megahertz.
5: Okay, there's a song which is a very new song. I'm singing for the first time, and one of my favorite artists. Check it out.

रखती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

Elambu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: निगदेशी रङदेन आजेबा व्यवहार लजीब मुला विषम थेरङबा थलाछुगो थे निगदेला समस्या हिन्न रोमी बाह्र अधेला एक्काइस एनिगदी आजेबा गे लवगदे देन छ्याम ब्रा थाप्रोगो बरु जवा गे लसी थे निगदे धागो यसो ख्रिस चुरी निपुन मुस्युला रोला वरिपुरे निरन्तर दुष्ट निगदे मुबा रोला आलोचना लमुला रोद दोष लगब लमुला रोद घृणा लमुला चुरङलासी हाइमै एन थेनी गदेला नकारात्मक आजेबा भावना रङ छम्नोन थोनबरी आतानी रोसे चु थेनी गदेला समस्या हिन्मा रङ समस्या आइनमा बिसी गोसुजी देन चुसे रोद निरन्तर सन्दे द प्रेम देन दयाला छ्याम प्रतिक्रिया पिनबरी अनुमति पिन्जे मत्ती पाँच अधेला चौवालिस तर एनी गदेसे गणताम न्यानगो एनी गदेसे रङला शत्रु गदेदा माया लौ ओछे एनी गदेदा दुःख पिन्ब गदेला लागिरी प्रार्थना लौ स्यन्दोदा नकारात्मक आजेबा मनोवृद्धि रङला सेमला शान्ति थ्राबरी थापिन्छुगो परमेश्वर से रङला बारेर तिगा बिवन मुला बिवत्ताम सेमली थन्छुगो रङला प्रतिक्रियाला रङला मनोवृद्धि से रङ लुइला कते आनन्द किन्बरी हम्सुला बिसी निर्धारण लमुला जब मिगदेसे रङदा दुर्व्यवहार लमुला विचार लसुगो कि थेनिकदे जेखेन रङलान तरिकासे व्यवहार लजिबमुला देन रङलान तरिकासे प्रतिक्रिया पिन्छुगो प्रेम देन दयाला छम आमेन रङिनार जीवनले परमेश्वरजी प्रशस्त आशिष पिन्छु गए
1: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98 85 53 339 हस्त त्यो समय रिङा बिदा ताजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
2: Time check. It's 7 PM. अहिले साँझको 7 बजेको छ।